ततो ब्रह्मवर्चसितरः कोऽप्यागृह्णाति तादक्षिणत उपदधाति तादक्षिण

0: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, होती जो प्यास पी उस पे वन की, वंशत सिद्ध को बेद मिलायो। पूर्ण पो मन ठौर बसो, रस बासन से ओ जो दहंग दिस्तायो। गोविंद वाल गोविंद पुरी सम, जलन तीर विपास बनायो। गयो दुख दूर बरखन को, सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। समरथ गुरु सिरहथ तरियो, गुर की नी कृपा हर नाम दियो। जिस देख चरण अगन हरियो, निस बासर एक समान त्यान। सो नाम सुने सुत पान डरियो, पन दास सुवास जगत्र गुरु की। पारस पेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो। समरथ गुरु सिरहथ तरियो, अब राखो दास पाठ की लाज। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हरनाक सफारे करे आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्तर दीन बहु साज। सो दामा अपदा ते राखिया, गनका पड़त पूरे तह काज। श्री सतगुर सो प्रसन्न कलयुग होए, राखो दास पाठ की लाज। झोलना गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया, शब्द हर हर जपै नाम नाम निद अपै। रसन अहनस रसै सत कर जानिया, फुन प्रेम रंग पाईए गुरमुख ते आईऐ। अन्न मार्ग तजो भजो हर ज्ञानिया, बचन गुर रिद तरो पंच कू बस करो। जन्म कुल उधरो द्वार हर मानिया, जाओ ता सब सुख एत उत तुम वंश वो। गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणिया, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर। अगम गुण जान निदान हर मंत्रो त्यान, अहनस करो बचन गुर दे तार। फुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करो, संत गुर सिख तरो नाम सच रंग सर। सदा निर्वै निरंकार निरपौ जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रम तजो नाम गुरमुखो भजो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर। गुरु गुर गुर करो गुरु हर पाईऐ, उदत गुर गहर गंभीर बेअंत हर। नाम नग हीर मन मिलत ले बलाईऐ, फुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस। मैल दुरमत हिरत शब्द गुरति आईऐ, अमृत प्रवाह छुटकंत सा द्वार जिस। ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ, नाम निर्वाण निदान हर उर तरहो। गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे। जाकी सेव सेव सिद्ध साधक सुर असुर, गण तरह ते तीस गुर बचन सुन कन रे। फुन तरह ते संत हित भगत गुर गुर करे, तरयो प्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे। तरह नारदाद संकाद हर गुरमुख है तरह, एक नाम लग तजो रस अन रे। दास बेनत कह नाम गुरमुख लह, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे।
1: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Radio Sai now presents a set of Brazilian songs on Sri Satya Sai education in human values, brought to us through the Institute of Satya Sai Education, Brazil. Our King shines, from Him is born the sound, from Him is born the light. Our King shines, our God is King, He leads us, He is our law. Come, wherever you come from, join this chant. password is not wanted. We are peaceful, we are kind. There's always a place for someone else in this dance. Sing aloud, sing this song. Our language comes from the heart. Our religion comes from love. It doesn't matter who, it doesn't matter color. Our tribe is humanity. Yesterday, today, and forever and ever. Our Lord is yours, He is always one. He makes Himself many, but is always one.